0: बोल बोल दिलावर कहाँ है? बोल।
1: लाल जी गजब हो गया, मेहरू को कुछ गुंडे उठा के ले गए। देखिए मैं मेहरू को लेके आता हूँ, बारात आने वाली है, अब घर की इज्जत आपके हाथ में है। और हाँ सिकंदर से कुछ मत कहिए।

0: चोर चोर चोर दे।
1: अच्छा तो तू यहां भी आ गया इसको लेने के वास्ते। अपन जिंदगी में बहुत कमीना देखा है लंबू, तेरे से ज्यादा कमीना आदमी अपन आज तक नहीं देखा। क्या अक्का जिंदगी भर ये तेरा मासू का था?
0: नहीं।
1: उसके बाद जब दिल भर गया तो अपना बासी टुकड़ा उठा के दोस्त के आगे फेंक दिया। छूरा तुझ पर। ए लंबू, मर्द की औलाद है तो उठ।

0: अरे लाल जी, अब क्या होगा? दूल्हा भी आ गया।
1: अब सब जो भी होगा अच्छा ही होगा।
0: रामलाल जी की हालत बहुत खराब है, आप इधर संभालिए, मैं उधर संभालता हूँ।
1: बेहतर।
2: हे भगवान, अब क्या होगा?

0: मैं सर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेडी और इसने मिलकर मेरू बहन को भी उठाया।
1: क्या
0: विशाल भैया उनके पीछे गए हैं।
1: राम तुम इन सगले को भागो, मैं इससे निपटता हूं। बोल मेरू कहां है, बोल मेरू कहां है, बोल मेरू कहां है।
2: तेरी मेरू को तो अपन जोरा के बाजू में दफनाएंगा क्या।
3: Memphis, Tennessee recorded a song on the Sun label. He has a new distinctive style.